गीत सामनाय ग्रंग्रक बैत्य सों बरकनि जे सामा मदेतिके जानाय नोंनाय टंनाय गे अबहायखनो सों सिनि ओ बेमानि याकनि कागै मानो गे आसुक जरा सों खानालायके पाइल्स बेमानो तैनै कक थायसा थायनै

आओ खापांगनी का ताकुक ताई बुकुक चुन नरक खनाई दोंगो छारासा पॉइंट डॉग मेगा हर्स नी बिसिंग ते ब्रीरुंग नी पांदा नरक नी बागई दिने सं टॉपिक तो बुझा कसीनी नुखुंग नी हमजक आओ नुखुंग नी हमजक ने जे खरक्षा दोंग मानी सं बिनी जारे नो सं साल फाइकें के सं सिनी जेस सामुंगो सं तुमुंग गदाले दोंग के सं आ जागावा जरा नि बिसिंग सगैनानी जरा नि बिसिंग नगर सफाइनानी तई जरा नि बिसिंग थुनानी अबरक चत्न बरंग जारे नो सं मानी दोंग फियाबा सं वाशिपन बाबी नाई एबा वान सगै नाई सं बरक नो खा कचांगनानी आवाहे कक थाइसा फाले सावैनाय सं बरकनि खानो कचांगरिनायवन एबा खेबा बरक नो सं तेबो खा कचांगरमानि बिसिं तेय बरकनि सामुं रग्नो हेलें सासा ख्लाइरवन हनै फियाबा सं आवाहे वानसुगिया तंग हिंगे सं वानसुगो नकनि सामुं आबो तामोबा आबो बेलायनो क्लाइसाने फियाबा आबोहाया सं कुथुक वानसुगै नायखेंके सिनि नक नुखुंनि सामुं रग्नो आबो चपलाय उइ ख्लाइ दंनानि आबो बसुक जरा तै तुक आबो खरक्सा बरि बसिमिनो छाइमानो फियाबा वाइसु वाइसु आमा हाइनुक जागो सं बरि फानो बरि रोगनि सामुं न सं बुजि मानिया फियाबा आ जरावो जे जराव नों खरक्सा साजगङै छाइमिया फियाबा उलो जेफ्रु नों हामजगङैयो आफ्रुसे नों आगा सामुं रोगनो बुजि मानो गे अबहायनो नरकनि बखाउबो अमाहाय कक रक तंगै तंखे नरक सोंबाय गोरों हरै मानो ओंखाय सिनियरनि कक दुख नाम्बार दे नरक साइ मानो हांखे अजराव ताइ तांसार चामुं सोंखानाय नायलेन ताइ नरक बो गोरों हरदि ताइ नरकनि खानि कक रक सोंना साहरदि

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

नरखना तो एफएम उज्जैन तो 101.6 मेगाहर्ट्ज से बका बाशारा 7.8 मेगाहर्ट्ज आ मालिक सिंह सोंग के फायदे सिंह उजराव हाय ना हाय वाइन खेली मानी रुचाप मंखना नहीं ले ने उजराव हाचक ने रुचाप मंग पांडा बलाय नरखना तो रुचाप मंग जे रुचाप मंग सिंह खाना का हंगे ना भाई दीपोर काना ने जराव सराय रो जेसे थुना मुजुंग ये फानो बर थुना ने मुजुंग ने थांगो हायदा आउ जे फायदे खाना लाइने खनादा तो रुचाप मंग आबनी उलो हाय ना हाय कि फिलिप हैप्पी नाइ नरो ने कचारो

मुख मुचीनी तुयो कुलुक जा तिशनाय नंग नाय चिंबोनो मुख मुचीनी तुयो कुलुक जा तिशनाय नंग नाय चिंबोनो।

0: तो ना हरे यान लोगे वालोंगो हुलुंग केरी दिखाए बैंग कुछ जा खता
1: इको माय बैंग रो कुछ जा खता
0: इहे मुसासे
1: ओ मुसासे जा खता
0: ओ अंकाय मोडु फुलका एलेबोरा फुलका काय चुवाक फुलका ता अंकाय पिस्तान बाये लुंग खता डॉक्टर थांगा इंजेक्शन दखा गे हम खता वंग नंग निवरक रक तंग थक जागे नको किफिली फाइका आनि केन को थमान न पाइखा
1: मसा नको किफिली थांगा छरी का हमंगे हिंगा का सा खामिनि थांगा के बिनंग निवरक तंग थक जागा ना इ याबो बलंग को छुक रक बेलाय बेराय मानि थांगमारक जाया आर थांगे बेंग रक फनो सिंद्राय रक फनो वार जागे मानो ना सोंब आ बागै न सेंग रग बहाय न बलंग रग थांगमानि जाया ओंखाय बिनि गेरां गथमा त जिकन फन बेलाय न नांकुक मानि ताय बेलाय न खना तक कुखा बिनि गथमा बसानि यागुल फायदे हेगे सेंग सिनि यागो जरा बकरि खेबा सेंग रचा मुंग तांसा खना मानि बिसिं ते सिनि पांदानि पाय मानि फाजिं थांलायने सेंग न रचा मुंग रचा बे खना नाय मेहेली
2: खुलुंखा आने मुंखा मेहेली देबा मा आं ताबुंग न न तांसा रचा मुंग रचा बे खना रिदाय उफी

0: bakri badal panda khnavakya tini ni bakri badal panda no kom thina inkha tonuja dev barma akashbani agotra tabu khnalaine khani mari panda
1: langma sajawi tangma bai haino hai jara sakpayu kha jing mari ni bisingti नरोग नि खापुरमानो याफार लायनानि बागै खाखायो नरोग जतनो काम करिनो तंबायना केबो बा हांग्रायनि आवां बुथाय आवां बेलेबनो तुयि लांगमानो सजावै चावै काम करिनखे जतनो हाहि केने तंबायना हने आव फाइदि नरोग नि दिनि अतं थकमानि जरागो हाइनो हाय रिजाब मुनि मारि दुबि फैखा कांदि कलोनि रिजाब मुनो तुबुइ जों फाइदि बिन रिजाब मुनो तामु तामु बो जोंनो याफारनो नायलाय फिवानो ओ बारिया नगर संनो इमां नुकमाते मुखथांग नुखलाय आचुक कक सालाय खामु बायथां बायथां साक साक खाचुक बाय चालै थां फानो मकलनि इमांले चालै थांगै माया जेसु खाचालो याकलाम बेरा फानो खापांले कुतुलि माया बुखुकले रेकेरि साव नों आनि आंनि नि हनै

Marketing song, sung on chera live mani ko thamao sung kabang ma kok lam narok bai salai nai ang tong nai narok bai o panda o oba hi kenam phia ba dam sa chora phia te dam sang gei chodi tham chi hai ai ba ka ba choti nui chi ba hai jora chini ya phao tong ko ke sung abuni ba gei te ba sai man lai nai chini tripura has te o puila puisha ai ba ka ba coin sabo tubuka आओ के सिंग आपनो तैबो तम नायनि थाका के चिनी महाराजा रत्न रत्न माणिक बोनो पुइला चिनी त्रिप्राओ अमाहाय पुइसा सनाम माने सिंग साइमन बुबाग्रा रत्न माणिक 1464 बिसिनि सिमी 1489 बिसी ओ नेखबो साका ओ साकानि तम जों नायनि थाका के 1386 आ जराव संस्कृत जे लैंग्वेज एव खब सैथाय बाय सिंग नुग जागो के अब हाय जे तमंग नानेन थाकां का आ जागाव सिंग रुपानी कोइन न सिंग नुग जागो अचिन त्रिपुरा हास्ते ओ पुइला जे सिंग नो पुइसा एव खब कोइन हिने जे सिनि नै बोरों खा महाराजा रत्न माणिक आउ नरो तमंग साकानि फासि नानेन थाकां के Saka era Kono, and a taka 1386 Bisho, Abahai, Sung Shaiman Kam. A Jorao, Koroksa, Ishiri Botongo, Tomu Bini Ojek, Bubagra Rotno Manikoni, Isiri Nikono Shana Takankai, Loxmi Mahadebi, Ao, Bono Sung Abahai Hinibo, Sinijago. Tomu Nanyan Takankai, Kubangma, Sung. Tiny mang, high rock, if a couple of Sanskrit base, Jack, our high Parvati Poromesh Bara, Jarano, Parao, Honey, our high rock, Nishi Jack, Sungugo, Sri Durga Radha, Napta, Bijaya, Ratnapure. Our high rock, Nishing Kabama, Sung Tomu Nanyan Taganga, or Jacoyan Rogo, Sung Shimano. आओ गाय सिंग बक्सा बक्सा साइमन्याना जे बुबाग्रा रत्न माणिकनि बिहिकनि मु एबखबा बिनि लगिसं एबखबा जे रानीनि मु खा लक्ष्मी महादेवी आजराव गाय आजराव न पुइला चिनि त्रिपुरा हाओ सिंग कोयन एबखबा पुइसा बाय सिनि लाइमानि आ आजरानि पुइसा रनो सिंग नानि थाकांके बेबाग न Rupa rok bai tak zak, a jagawa mutai ni mang, sung kebang ma oba hake no sui zak, oba hai rok nuk zak. A mani ki sung song, sung no rok bai kebang ma kok lam, shalai nai ang to tong nai nyan rok bai, oba hake, pia ba dam sa, jora tong nai. Maharaja dhanna maniko, maharaja dhanna maniko ni, je jora ni kong no sung nai nyan ta kang kai, 1490 ni simi, 1519 jora. सिंग तमु नानी थाका हंगे जे जराव बुबाग्रा मुकुट माणिक थै माने उलनो बुबाग्रा धन्न माणिक न सिंग आ जगाव बन सिंग सिंहासन आसुरि माने साइमानो 1490 बिसिओ एबाखब सीईओ आ जराव सिंग नानी थाका गाय बिनि जराव जे बुबाग्रानि जे इसिरि इंखा कमला देवी आ जराव बिनि साजक साजला अबहायर तो तंगुनो फिया अ जराव जों तमु नानेनि थाकांके गबांमा बरनि जराव जों नुगो महादेबारि चतुर्देश देवता जे मतायन ते रदा किशोर पुर अबहायर गबांमा जों साइमानो आज जराव तमुंग सिग्नाने थाकांकाय धानी एबाखबा धन्न सागर अब हाय

आओ के मारे कि जो ते सैम लाइन नाइनि जी त्रिपुरा हास्ते लाइबुमा कक्नो सानी थे पुलाने सिमी जिन जे 185 फाइव बुबाग्रा बरक कक्नब जिन खरसाथाई दे सा लाइ अपनी विशिंग नरक जतन सैमान फीयाबा जी त्रिपुरा हास्ते जे बुबाग्रानी आमल जराव बमाहाय बमाहाय बहाय खाय मतर खाइजाक मानी जिन आबरको सैमान लायन तम जिन आ जरा फेस्टिवल एवं खाबा मतर खाइमानी आ कक्न जो सैमान नाइके पुलाव जिन खरसाटे खायो खारसी मतय आव जिन आब सैमान जिब्रै मतय हन सिने जागो आब उनका जिन चतुर्दश देवता हन सैमान तमु नाइन थे जे कचाम आओ

अब हायरोग बो सिंगनुक जाखा गा गबांग मा बरकनि चबा नांलाय मानि बिसिंतै गप्लाइंग मानि अब हायरोग बो सिं सायमान खा ते चबा तो गबांग कुक नुनांगो ते आबनि बिसिंगो चिनि भारत हाकतर नि बिसिंगो चिनि त्रिपुरा बो काइसा सिनिजाक थाय दं मानि आ गग्रग नु सिं सायावै दंनि माया बुबाग्रा रंनि बिसिंगो गबांग कुक बुबाग्रा नि नग सिं गग्रग नरक बाय सालायगा ते आबनो कारिफानो नरकबो पांडा खनामानि बिसिंतै आसक जरा आनो लगे रिखा आउ हिंके मारे किसिंग संग कोगलाम साते साते दामसा जरा कावई बाहा के आसक जरा कावई थां संग खासिर गिया फेब नाय नदि ताबो तमुंग नाय थाकाय चिनु स्टुडियो नि जरा खग दीपर्णी दामसा तामै सति बाची बांगै मुफली चिथाम ते जतन न हाय न हाय बेलाय बेलाय खे दीपर काहाम आओ अदिपर्णि जराओ आं तंगै तंगु नरक बाय स्टुडियो जि काश्मी आओ आं नरक न उराम उराम नमा साओ सिंचिनि लाइबो मानो सिं केबो सिया ओइ तंगै माया आबनि बागै सिं उराम उराम न नरक बाय जे जराओ सान थाखाय ककति सालनि सेकेन्ड डे फोर्थ आब्रुगे जों गोबां कखनो नरक बायदिनि लाइभ मानि कग्रकनो नरकनो सायमान दिनानि बागै नरकनि गोसारो फायसबाय फैयाबा दिनै हिंखा आं नरकनि गोसारो कग्लाम सानानि बागै सेबमान मानिबा नरक बाय कग्लाम सानानि होनैनि नरकनि गोसारो फायसबाय फैयोबा हिंखे अबाहायनो नरक आं बाय तंगै तंग' आसुक जरा फैयाबा आं तंनाय नरक बाय दिपरनि दामनि तामै सति थामसि जरा फियाबा जों लाइबोमानि कथमा जों नरकबाय ते सतिनै हाय दंनाय नरकबाय अबनो फैनो कग्लाम सालायै आबनि उलंके त जों ते कायसा पान्दानि फासिंगो थांलायानो जों तमुं सायमानानि थाखांके गोबांमा सिथाय चिनि बेरेमानि बिसिंतैबो जों सोरोंमानि बिसिंतैबो जे रों सोरोंनि दंनाय हिन्जाखनाय रग जे अग्रा जाग्रा हिन्जाखनाय रग दाबुक फानो नुगिया ख दाबुक फानो सायमानिया ख गाय नरक बेरेमानि बिसिंतै फानो नोंथोन यां उयां थामानि बिसिंतै आं जे थाय सामानि नरक न नरक थाङै नाय मानो बेलायखेनो गोजाम थाय अ थाय रगो थामानि बिसिंतैबो नरक चिनि हुकुम मुकुमनो बेलायखेनो जे हामजांनाय रग खाथि उइ नारक थायखलाय आउके अबाहाय नरक बाय कग्लाम साथे साथे जरा तो थाङैनो दङ फियाबा आं सानामुचुङ नरक देव सिदि परिदि ते चिनि लाइबुमानो सिदि तमुं नरक चिनि लाइबुमानो सिगांके परिते परिते तेबो सिनामुसुंनाय तेबो परिनामुसुंनाय आ जराव गोबांमा चिनि त्रिपुरा हासेनि जेबो बाग्रा रग तामो तामो सामुं खलायखा बमाहाय बमाहाय चबा खलायखा ते फातारनि जे सामुं हुमुं रग बमाहायखि बरक आजराव बरकनि जे चुबामुं खरकसाते खरकसान बाहायखि तामुं खलायखा बरकनि कक लांमानि कक जों ते बसायमान थाय फियाबा आं नरकन दिनि जरा आसुगबो गोरिखाबा आसुते सायमान गोलाक तामनि हिमालय जों गुबुननि साल रगो नरक बाय गुबुननि पान्डा रगो आं नरकनि बागै तेबो तुबै फायनाय तेबो कग्लाम सालायनाय तेबो सायमान लायनाय आउ के मारेखिजों सं नरक तंगै तंदि आनि लगिअ अबाहायखेन जों नरक बाय तंगै तंग' फियाबा जों तमुं नायनि थाखांके चिनि लाइबोमानि ककनो जों नायबो नायबाया सावैबो साबाया सेवैबो सिबाया हायरिबा हिंखे बेलायखेनो कतर आसोद बिसि जे बुबाग्रा रग दङै थांमानि आबोथ' जों साना थाखांखाय आसो किसा जराव दामसा जरा बाय नरक बाय बाहायखे सावै माननाय आबोनि बागै नरकनो आं सानाय जों दामसा जरा बाय सावैबो साबाया नरकनो हिंखे जों बेलायखेनो सायमान थायखलायो ते सि थायबो खलायो आव मारेखिजों सं जरा तो दाबो त्रिक त्रिक बिनि थायोनो थाङै दङ फियाबा लाइबुमानि जे कथमा एबा खायबा जों लाइ थांजाक जरानि कक लाम रग नरक बाय सालाय दंलाय मानि अबाहायखेनो फिया जों अ जराव नरक बाय किसा लेलानानि फासिङाव थांलायनाय लेलामानि उल' हायनो हाय जों गुबुननि पान्डा रग तुबै फायफिरानो नरक बाय तैबो आवकै जों अजरा किसा लेलानानि फासिङाव थांलायो

0: जय शंकर।
1: जय शंकर।
2: बाबे मौसम बड़ा सुहाना है आज, चल घूमने चलिए।
0: हाँ जी भाई जी।
1: घर के बाहर हूँ, नीचे आ जा।
0: ओके ओके ओके।

0: 弄过来两口，别个摊上弄过来，弄来把这个套过来到那。
1: 哦，大哥什么关系啊？别你哥别查那个人，别人也认识过呢。别摊那东山，摊人，摊人别来东个单。
0: 能从这从东山点门卡？
1: 但我不不对。
0: 哦，俺对财面的对财面还有东个呢，弄来。
1: 妈呀，阿哥能不光是不查那办呢？
0: 哥老弟兄们，哥没有哦。俺不，我说现在汤不如，哥好多好多可能大部分男孩来吧。啊，嘎个弄过来兄弟，莫说把你过那去。从这样开吧，还莫做不来也碰个阿做杂，哥老弟开吧，哥老弟开杂。俺开不过那个乌达，我说起码排挤我。
1: 都搞吧，弄俺们的娘来，可能过得不能。
0: 可能过不了。
1: 哦，给夫人洗面了，啥子来当红嘞？
0: 哦。
1: 但我看他们的夫人也不怕事。其实啥子太阳你看不嘞？
0: 都阿哥不多，咱家弟啊，弄过来你开把海虾。
1: 俺爸给你洗面弟啊，弄些把海不用洗面生哦。
0: 俺爸还有大，不人家帮杭州当哦。
1: 都阿哥
0: 你。杭州一个，你他妈今天。
2: दर नवड़ तो
3: सबो संतरें दा
2: यहाँ में दरा
3: ओ फाइदी आसु फाइदी ता
2: के औरों नुकान आसु कन बसी नौकरी जा
3: नगना बुला गतियो थंगना
2: के बसी फेगर तुम
3: ताऊ तो तैयार में कैसा
2: मानु चो बेबंग तैयार का उखो तुरो शिमी कैसा वाबिश हुई गया
3: यहाँ ले खाना चावल तो शिवो बोरक बा सब सामनो सब क्या
2: सामा तो दानुगरा विदा कसम तुम तो थका के काम लोकानी साजा गया को बंद
3: थी
2: बासी फैया कुदे दरा बेंथा का रिंगा दे
3: बेंथा का सितो ए नंग फरा फाइक्यो
4: फाइक्यो पा खाने ने
2: तां खाई तंग से बासी आसे
3: इको संतरे फायो
4: बाबा आ ताजा हो ताबो या को दाक तालमान तेरे दाक तामना पागुई थंगा न तामो
2: ओ बासी नंग अब ताम नहीं छामा कोक ने जैसे उन नहीं पता अंग नरक न पागुई मानो नरक ताम नहीं छामा कोक तां खाई दाती खना नरक फायदी अंग नरक फैसा मुंसा खाई चोगिया
4: दो ताई जाम खाने सा कोई काका काकी बोल रही थंग मैं क्या
5: बस हम बाबू ने कॉम टूटा कुली
4: तांगना जोरा तांगी दी कोई चाना जोरा सा दी हंजा पान साजा पान कॉम रोक ता फिर रोक दी कोई ताई जाम खाने सा
5: बस हम बाबू नौकर काम ना
4: चाना जोरा सा दी तांगना जोरा तांगी एंग ने करा लो सही खामा एंग नहीं एंग वो तांगना तेरे समय करी जा
5: मारुक भाई काका मा थ

0: तुम खा देते हो बाकी गुड
1: सारा भाबे क्या संतरे
2: भाबे जी पूरा मरंगो कौन से ले तो भाई
1: मरंग तो ना खेले
3: अरे नो भाई
1: काम कर रहा ने पिया होगा तो तीर होगा
2: सब दानो रिबा सारी फरने
1: हंकाय तो आपको बसे जोग लो दे बसे जोग लो दे हम काम कर रहा ने
2: आप खुद तीन है ना असमूर इधर कौन दिखे?
1: हाँ, कौन है इसमें नहीं बाने?
2: तो बोल दे अलाइन अलाइन अलाइन अलाइन हिम्मत।
1: ताकत दे कौन?
0: दो, अंका अंका गुई अंका।
2: तब साथी को बोलेगा साथी।
1: ताकत दे। दो लामा सुनिए कुमार।
0: दो अंका अंका गुई ताकत दे। हमने तो साला बाग शे।
3: ताकत
0: शे हमने तो साला खाना नहीं अपना। हिम्मत हिम्मत गुई हिम्मत
1: ताकत दे।

0: खाना मुझे ये पावना बसन
1: आ आम तो इंदा खाना मुझे सुमा हंगाई साना मुझे सुमा से सागरा देखो
2: हके बसे इन्हों ने ओ जोगो जोगो नुंग मा बाई अंशा यानी चोंग मनी मासा जीने बसे बसे इन्हों रोग आनी को खाना ना खाई कुलक दिनों क्या नारी भाई जी आं कुलक दिनों नुगिया सांग आं ओ कोक साई मंगला
0: हने को सांग ना हरी भाई जी
3: तो बाप को खाना बाप कुल के ना बाप कुल के साइमी है देवा
0: ना हरी खाने बने
3: तो आप को थांगा
4: ना थांगे दो आप मुझसे क्या खेलने के ना
0: तो अन बाबी भाई चला संतरे ने
2: कौन है क्या
3: ये कौन भाग गया कुल ते आज तो देखो किनारे ना कुल ते
5: ब्लैक तो सुता के ले
3: बाप सुन ला नू रहा है
2: हाँ क्यों खाना बाजी बात से अनि को खाई मो हाच अनि मो को कंखा कैसे समझनी को ओ को कंखा कैसे समझनी को
3: बोल सुन दे
2: अनि को खाना काई जे खाना नै बबो थुइनाय ताई आंगबो थुइनाय ताव नरो छादि ओ कंखा खाना दा
3: हादि तमा समझनी को ल
2: दादा छादि छादि नरो पे तांगा बेने बस बस तानु गरा नरो पे बंग थुइनाय अनि को बबो थान मुसु गे अनि लगी लगी
3: बोल सुन दे बा नुराय
2: पाछे काई नमे ओ जोगो जोगो तुमे बा आं साया नि जोंमा मा साजि नाय हाके खना बाजि सालचा सिनि बकरा रो आनो हापिंग मा मुसि जोग नाय दि नि रो हपुरो ओ मुतु ग बरक सिनांग जा ओ बरक ना उला मुसि सिना मै जतो न बाहान बा बिचार फुरो
3: मुसि सिना कारो
2: आपुरो काय न आं साया ngai आनो नाम नि रेखलाय रोका
3: Aku
1: tak
2: mau. Aku
1: tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak
2: mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau. Aku tak mau.
6: कुलक्ति न न न भाई न खुं खानानी हनई वाचक मानी बे बे भाग नो तू यसी खसक लंगशियो आ

0: শুনছিলেন আমাদের অনুষ্ঠান কে কে কে নিয়ে এই সময়ের গান।
1: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपये की 5

0: योजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
2: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
3: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसके वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
4: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की

0: शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक M.L. जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल FC ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।